हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: जिसको रतन एक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान, मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत, जिनकी भारिया सीता माता को तुम छल से हर लाए।
2: बस बहुत हो चुकी अनर्गल बातें, इसकी पूछ जला दी जाए।
1: महाराज रावण, यम दिन चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा

श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी, तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: देना।
1: हे हे हे, अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आगे आ गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
1: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
0: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
0: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
1: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
1: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
0: गोविंदा,
1: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
1: बंद। खड़ा करो, अब बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
1: अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहा कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, कहा हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले

ताले तक भूमि तक ताले तक जमी तक दला हो तक जगे तक ताले के ने तक नक तक जम तक नक नक जम तक नक नक जम तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताले तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने जम

0: में माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। हम
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 9 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्ला।

0: काम तो बताओ।
1: काम सीधा सादा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो
0: ना, ना।
1: सुनो तो
0: ना,
1: ना। सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

0: जाइए,
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: पहले जरा आप

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो,
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता, तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरी तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूवी चॉइस और कीजिए दिए गए फिल्मों से गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के ऐप्स दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का ये मस्ती भरा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार अंतरा मस्ती। मस्ती करेंगे, वैसे मैं देर करता नहीं, हमेशा की तरह देर हो जाती है। और क्यों हुई है देर? क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत नासाज थी। स्कूल से आने के बाद सीधे मैं सो गया था और थोड़ा सा जब मैं सोया हूँ तब जाके मुझे रिलैक्स मिला है और तब मैं आप सबके लिए आपका शो लेकर आ चुका हूँ। अब आप सबके साथ मैं बना रहूंगा रात के 10 बजे तक। फिलहाल मेरे पसंद के सबसे पहले गाने को एंजॉय कीजिए और आते ही इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने, एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज साउथ अफ्रीका से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई जान। बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बिट्टू कुमार जी। साथ ही साथ दिगंबर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दिगंबर जी। और सर्वेश भागा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ज्योति खटवड़ी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं ज्योति जी। ओके, और हमें संतोष गौड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और एमडी फैज आलम जी, वालेकुम सलाम, वेलकम है आपका भी। और बाबूलाल अंजाना जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। रामकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी का वेलकम करते हैं। और बता दूं कि जुड़े हुए एमडी महमूद आलम जी, यानी सऊदी अरब रियाद से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। गजानन सरोकार जी, जितेंद्र सिंह जी हैं, महक जी हैं, एमडी फैज आलम जी हैं, रंजीत जी हैं और सुनीता गोप जी हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। तो प्रोग्राम का मैं आगाज करता हूं, लेकिन आज आपको सारे मैसेज करने होंगे सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के व्हाट्सएप नंबर पे, जो है 9135841232, यानी 9135841232। इस नंबर पे ही आपको मैसेज करनी है। और इस प्रियंका जी भी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी। तो अब एंजॉय द ट्रैक। सबसे पहले इस गाने से अंतरे के आपको गाने लेकर भेजने होंगे व्हाट्सएप नंबर पर ही, जो है 9135841232।

0: और मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है दिगंबर सिंह जी का। क्या बात है दिगंबर जी, है ना, माते ही छक्का लगा दिया आप। ज्योति खड़वड़े जी और नाहिद जी है जुड़ चुके, वेलकम है आपका भी। जागीर खान जी, बिट्टू कुमार जी और एम डी फैज आलम जी और प्रियंका जी, अकबर खान जी एंड सुनील नाम सुनील कुमार जी, बाबूलाल नंजाना जी, सर्वेश भगत जी, अशोक पाल जी, गजानंद जी, सीता गोप जी, मतलब सभी का और बहुत से दोस्तों का मैसेज है। और जुड़ चुकी आरजे वंशी का जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो कॉल लगाते हैं सीधे दिगंबर सिंह जी को। दिगंबर जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मसीह में। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक नंबर में।
1: हेलो अमन सर जी, हेलो अमन सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार
0: नमस्कार, कैसे हैं जी दिगंबर जी?
1: नमस्कार गुरु जी।
0: अरे कैसे हैं?
1: ठीक है गुरु जी, आप तुम सुनाओ।
0: एकदम हम बहुत ही बढ़िया हैं। और क्या कहें, एक बार में आपका नंबर लग गया, सबसे पहले छक्का मार दिया पहले बॉल पे।
1: आप गुरु जी कम से कम 2-2.5 साल हो गया, लगते लगते थोड़ा तो नेका तो अंदाज हो जाता
0: है। अंदाज हो गया है जी, बिल्कुल। कहीं तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
1: चांद छुपता है,
0: है, है, है।
1: सूरज निकलता है मेरे मन मंदिर में, दिन रात तेरे नाम का दिया जलता है, यही गाना सुनना चाहते हैं मन।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, एंजॉय द ट्रैक, बहुत ही प्यारा नगमा है, धन्यवाद। और रुबीना नाथ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाथ जी।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो अंतरा में आए आप जो भी शब्द है उनसे गाने लिख के भेजिए 9135841232 पे या 9135844। आज व्हाट्सअप कर रहे हैं आप।

0: मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।
1: ओ माय गॉड।
2: तुमको यकीन आए तो आजमानो, अपनी किसी सुंदर सहेली को बुलवा।
1: ओके जी, लेकिन मेरे पास मैसेज बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे मतलब सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ ही नाम ले पाऊंगा। ओके, तो ज्योति खटवड़े जी हैं सबसे पहले, और नाहिद जी हैं, और महक जी हैं, और जाकिर जी हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, और सुनीता गोप जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, रूपचंद जी हैं, फैज जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, और मिसाल जी हैं, अशोक जी हैं, सुन कुमार जी, अकबर जी, कुंता जी, सर्वेश जी, गजन, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं। इसके लिए सॉरी सीधे, मतलब सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो कॉल लगाता हूँ सीधे ज्योति जी को।
2: मेरे मन मंदिर में दिन रात।
1: ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, कैसी हैं?
3: ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक
1: जी
3: बोल रहे हैं?
1: एक्चुअली मैं मतलब दिन भर मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत ही मतलब बस मुझे दिन भर नींद आ रही थी कि मैं सो जाऊँ, लेकिन स्कूल में सो नहीं सकता हूँ ना, ये चीज थी। घर आकर थोड़ा सोया हूँ, आराम थोड़ा सा हुआ है, तब जाके मैं आया हूँ स्टूडियो, ये चीज।
3: अब ठीक है?
1: अब फिलहाल तो मैं ठीक हूँ अभी। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल से मेडिसिन ले रहा हूँ, मतलब यानी कि दवा ले रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी यानी कि तबीयत आजकल थोड़ी सी नशा चल रही है, और उसी दवा का असर है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, ये बात है, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो बताइए, अंतरा के शब्द से कौन सा गाना चुन के लाई है आप?
3: जब तक रहे तन में जिया।
1: आए हाय, ये तो मेरा फेवरेट गानों में से एक है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना लाने के लिए, एंजॉय द ट्रैक।
3: ओके, थैंक यू।

कि मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है आज यानी कुंता बेनी जी का। कुंता बेनी जी कॉल लगाऊंगा मैं आपको बिल्कुल। और ज्योति जी हैं, गजानंद जी हैं, नाहिद जी हैं, सुनील जी हैं, जाकिर जी हैं, प्रमोद जी हैं और राधा कृष्ण गोपी, दिगंबर जी, महक जी, एमडी फैज जी, सुनीता गोपी, साहेबराज पवार जी, रूपचंद जी, मिसाल अंकल जी, अकबर खान जी, रुबीना राजी, मतलब बहुत से दोस्त। कोई बात नहीं, कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है कुंता बेनी जी।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: आज क्या बात है, बहुत ही जल्दी नंबर लग गया आपका,
1: पता नहीं तो।
0: ओके तो बताइए, आजकल क्या कर रही हैं?
1: मैं कुछ भी नहीं कर रही सर, आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ अभी तो फिलहाल तो।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज सुबह बस वंशिका मैम का प्रोग्राम सुनने का टाइम नहीं मिला, मैं फिर नहीं कर पाई।
0: अच्छा कोई बात नहीं, या उनका या मेरा है कि नहीं, आ गई बहुत। चलिए तो बताइए, आज अंता के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: सर मैं ये सजना सुन सुन मेरी चाबी की छन।
0: अच्छा चाबी की सुन सुनवा मतलब आप उन्हें सुनवा रही हैं। ओके
1: फिलहाल तो सर आपको और सभी श्रोताओं को सुना।
0: ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद, एंजॉय कीजिए।

0: ओके बाबा तुम मालिके रहो। वैसे फिलहाल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और सबसे पहले सुनील कुमार जी का है, उनके पास है बिट्टू कुमार जी, नाहिद जी हैं और प्रमोद कुमार जी, ज्योति जी, राधा कृष्ण गोपी, एमडी फैज जी एंड जाकिर खान जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, साहिबरा पवार जी, संतोष जी, रुबीना नाथ जी, गजानंद जी, अकबर खान जी, सुनीता जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं। फिलहाल मैं सीधे कॉल लगाता हूँ सुनील कुमार जी को। बहुत बहुत वेलकम है सुनील कुमार जी, कैसे हैं बंका बिहार से?
1: जी हम भैया नमस्कार।
0: नमस्कार, और बांका बिहार का क्या हाल है?
1: अभी तो बहुत बढ़िया है जी।
0: क्या हो रहा है जी?
1: जी अभी तो काम हो रहा है, लेकिन मैं बांका बिहार में नहीं हूँ, अभी मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ।
0: अच्छा, दिल्ली में है? ओके ओके ओके।
1: जी जी जी, तो दिल्ली एनसीआर यानी सोनीपत में हूँ जी मैं।
0: अच्छा, कोई बात नहीं जी, बस हमें लगा बांका बिहार में है इसीलिए, कोई बात नहीं। तो
1: जी जी जी,
0: अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: आज गाना है वो राम तेरी गंगा मैली का सुन साहबा सुन।
0: ओके, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।

और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहला मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है, नाम है सतीश, कहाँ गया जी इनका, हाँ सतीश जी का, सतीश निकेत शर्मा जी का। रुबीना नाथ जी भी हैं और हमारे ये साहेबराव पवार जी हैं, रामकिशन जी, नाहिद जी और सुनील कुमार जी, जाकिर जी, ज्योति जी, प्रमोद जी, राधा कृष्ण गोप जी और सर्वेश भगत जी, निशाल जी, गजानंद जी, रूपचंद जी, अकबर जी, मतलब बहुत से दोस्त जिनका सभी का नाम लेना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, इसके लिए सॉरी, लेकिन कॉल लगाता हूँ।

0: बहुत बहुत वेलकम है सतीश शर्मा जी, कैसे हैं? हेलो,
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: मैं तो एकदम झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास मजे में, चक्का चक।
1: बस सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं। अभी सुनील कुमार जी को सुना।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छा गाना था।
0: अरे सभी के गाने अच्छे अच्छे आते हैं, क्या करें, लेकिन वो लोग मैसेज करते हैं लेट से, मैं ही क्या कर सकता हूँ, क्योंकि
1: हाँ जी सर, जिसका फास्ट आएगा आप तो उसी का नंबर लगाओगे।
0: जी बिल्कुल,
1: प्रयास करते रहे, सबका नंबर लगेगा।
0: ओके तो चलिए बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
1: गाना है सर वो, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी
0: सही में इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल हसीन हो जाती है रूट कर। और वैसे गाना भी बहुत ही शानदार था। मेरे पास अगला जो मैसेज है अकबर खान जी का आया हुआ है। अकबर खान जी, राम के जी और यानी कि प्रियंका जी हैं, नाही जी हैं, बिट्टू कुमार जी हैं और ज्योति जी हैं, गजानंद जी हैं, जाकिर खान जी हैं और हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी हैं, फैज जी हैं, साहेब राव जी हैं, राधा कृष्ण जी, निशारंगा जी, अनिल जी, सर्वेश भगत जी, मतलब बहुत से दोस्त वैसे सीधे कॉल लगाते हैं।

0: जी बहुत बहुत वेलकम है अकबर खान जी। वालेकुम सलाम जी। आज आपका नंबर लग ही गया फाइनली। आप मतलब यानी तो यही कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होता, हमेशा स्पेशल कॉल में नंबर आता था लेकिन आज
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना
1: नंबर लग गया आज।
0: जी जी जी, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है तभी आता है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं? गुनगुनाना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको तो गुनगुनाने आता है ना।
1: रफी साहब का है जी।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: आशा आशा और रफी साहब का।
0: हाँ।
1: तेरे हाथों में पहना के चूड़िया हो चूड़िया, हाथों में पहना के चूड़िया के मौज बन जा रहा ले गया है, के मौज बन जा रहा ले गया।
0: ओके जी, बहुत प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।
1: हाँ जी
0: धन्यवाद।
1: बिल्कुल।

0: ओके, बहुत सारे मैसेज आए हैं। सबसे पहले साहेबराव पवार जी, महक जी और ज्योति जी और ईश्वरलाल जी, गजानन जी, बिट्टू कुमार जी, सुनील कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, जाकिर जी, राधा कृष्ण गोप जी, सुंदर गोप जी और एमडी फैज जी, सर्वेश भगत जी, मिसाल जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। सीधे कॉल लगा लेते हैं साहेबराव पवार जी को। बहुत बहुत वेलकम है साहेबराव पवार जी, क्या बात है, एक महीनों बाद आए हुए हैं।
1: सर वो आजकल क्या हो गया, आपने कुछ अलग सा कुछ चेंज कर दिए तो वो मैं सेट नहीं हो पा रहा उसमें।
0: अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपको समझाया जाए कि उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना।
1: हाँ, इसीलिए सर वो मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा।
0: अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ा देर में आपको आरजे वंशिका जी फोन करेंगे और आपको सारी चीजें आपको वो समझा देंगे।
2: जी,
0: ओके
2: जी जी जी,
0: ये आपको
2: जी,
0: मतलब उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको कैसे क्या करना है, वो सब कुछ आपको बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके
2: जी, जी,
0: तो बताइए आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप।
1: सर दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया, यही गाना।
0: सच में निसार किया, एंजॉय कीजिए गाने को, धन्यवाद।
1: बिल्कुल सर, नमस्कार।

0: और यानी कि साहेब राव पवार जी हैं, अकबर खान जी हैं, गजानन जी हैं, विष्णु जी हैं, सरोज भगत जी हैं, मिसाल जी हैं, फैज जी हैं, मतलब बहुत है। ओ माय गॉड, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल कॉल लगा लेते हैं इनको। बहुत बहुत वेलकम है आरजे सोनी जी अंतरा मस्ती में। हेलो, ओ माय गॉड, नेटवर्क इशू है। हेलो, लगता है कि नंबर पे कॉल लगाना पड़ेगा।
1: हेलो,
0: हाँ हेलो,
1: आवाज नहीं जा रही।
0: हाँ अभी अभी अभी आवाज आ रही है आपकी।
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: अच्छा जी, तो अंतरा मस्ती सुन रही हैं?
1: जी
0: जी जी। तो
1: और अभी थोड़ी देर हुआ ट्यून किया है, क्योंकि अभी मार्केट गए थे।
0: अच्छा जी, मार्केट गई थी तो मार्केट से क्या लाई है मेरे लिए स्पेशली?
1: जो लाए हैं वो खा रहे हैं।
0: अच्छा, अकेले अकेले खा रही हैं? काश मेरे लिए भी देती ना।
1: नहीं नहीं, अकेले अकेले नहीं खा रहे हैं, बहन है, मम्मी है, सबके साथ में खा रहे हैं।
0: अच्छा जी, ओके, कोई बात नहीं। बताइए तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: क्या मौसम आया है,
0: तो बताइए ना क्या मौसम आया है।
1: वो आप सुना के बताइए।
0: ओके, सुना दिया, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद
1: धन्यवाद।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिख के भेजे सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे जो है 9135 841232 यानी 9135

0: और आज के बनती हैं विनर ज्योति खटवड़े जी, बहुत बहुत बधाई हो। और इस बार तो मैं इन्हें कॉल लगाऊंगा। और क्या बात है, बहुत जल्दी आज इन्होंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब इनका जो भी ये खेलेंगी और ये जिनको भी रिकमेंड करेंगी कि हाँ मेरा गाना, मतलब इन्हें कॉल किया जाए, इनको प्ले किया जाए, मतलब इनका गाना, तो मैं उन्हीं को कॉल लगाऊंगा। ये अब रिकमेंड करेंगी, अगर खेलेंगी लेकिन रिकमेंड करेंगी किसी और के नाम से इनको, क्योंकि अब मैं इनको कॉल नहीं करूंगा। और इस बार इनका सबसे पहले नंबर लग गया है। और उनके बाद यानी कि प्रमोद कुमार जी, ईश्वर लाल जी, अनिल मेहता जी हैं, गजानंद जी हैं और जाकिर खान जी हैं और राधा कृष्ण को भी, अकबर खान जी, साहेब राव जी, नाहिद जी हैं, सरफराज जी हैं, महक जी हैं और सर्वेश भगत जी हैं, एम डी फैज जी हैं, एम डी शाल अंगद जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, राधा कृष्ण, क्या नाम है इनका, विरूपचंद गोयल जी हैं, रुदीना नाथ जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। ओके जी, फिलहाल कॉल लगाते हैं ज्योति जी को। आज की विनर बनी है, बहुत बहुत बधाई हो ज्योति खटवड़े जी।
1: थैंक यू।
0: तो जो भेजी है गाना, क्या वो सुनना चाहती हैं या कोई और सुनना चाहती हैं?
1: वही आपका फेवरेट है ना, तो सुना दीजिए।
0: अच्छा, चलिए सुनाते हैं, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।
1: ओके, थैंक यू।

और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया था, आज हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी का जन्मदिन है। अशोक देशमुख जी आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम सॉरी मैं भूल गया था, और एक चीज और मैं भूल गया था कि हमारे यानी कि कल हमारे जो रामकेश जी हैं उनका मैरिज एनिवर्सरी था, उनको भी बहुत बहुत बधाई एक दिन लेट से। सही सॉरी मैं थोड़ा सा आजकल बहुत डिस्टर्ब हूँ।

और इस बार बाजी मार चुके हैं एक बार फिर से आरजे सोनी जी। वाह क्या बात है। उनके बाद है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी, गजानंद जी हैं, ईश्वर लाल जी हैं, और हमारे साहेबराव पवार जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, और निशालंगा जी, रूपचंद जी, बिट्टू कुमार जी, रुबीना नाथ जी हैं, एमडी फैज जी हैं, और मतलब बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल इनको अभी मैं कॉल नहीं लगाने वाला हूं, क्योंकि ये इनका सेकंड नंबर है। अगर थर्ड नंबर आती है तो फिर एक बार इनको कॉल लगाया जाएगा, और ये जो गाना कहेंगी वो गाना प्ले करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये गाना उनका।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और सबसे पहला मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है यानी प्रमोद कुमार जी का। अच्छा जी, और आरजे सोनी जी है, और कुंता जी है, ईश्वरलाल जी है, और रामकिर जी है, जागर जी है, ज्योति जी है, राधा कृष्ण गोप जी, रवि महाराज जी, सवेद बागा जी, साहेब राव जी, अशोक देशमुख जी, रूपचंद जी, अनिल मेहता जी, गजानंद जी, एम डी फैज जी, मुन्ना जी और मिसाल जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं जी। बिल्कुल, तो कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है भाई प्रमोद जी।
1: थैंक यू सर।
0: और कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। आप बताइए सर, आप कैसे हैं?
0: एकदम झकास, बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चकाचक, मतलब क्या ही बोले, बोले तो लय भारी, एकदम बढ़िया
1: लय भारी। जी जी जी।
0: तो अंतर के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।
0: बिल्कुल नहीं रह पाते। इंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे। और जो नहीं चाहते कि मैं उन्हें कॉल करूं, तो सबसे पहले मुझे जरूर लिखिएगा नो कॉल, तब अपना गाना को टाइप कीजिएगा।

और ये मैं आखिरी कॉल लगाने वाला हूँ इस यानी राउंड का। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा इस गाने के बाद, मतलब इस कॉल के बाद। और इस यानी के राउंड में, यानी कि फर्स्ट राउंड में मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है आरजे वंशिका जी का, और साहेब राव जी का, जाकिर जी का, ईश्वर लाल जी का, और गजानंद जी का, एमडी5 जी का, अनिल मेहता जी का, और सर्वेश भगत जी का, रवि महर जी का, रूपचंद गोयल जी का, मिशाल अंगद जी का, रुबीना जी का, विष्णु जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, कुंतक, मतलब बहुत से दोस्तों का। सीधे कॉल लगाते हैं आरजे वंशिका जी को।

0: अंतरमस्ती में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आरजे वंशिका जी, कैसी हैं आप?
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: जी। आज बहुत ज्यादा मतलब उधेड़ बुन में लगी हुई हूँ मैं बस।
0: अच्छा, उधेड़ बुन में लगते हुए भी आप यानी आप यहाँ पे शो की एंजॉय कर रही हैं, सुन रही हैं, आप पार्टिसिपेट किया आपने?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, पर लास्ट मोमेंट पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाया, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स में आज स्टक हो रखी हूँ।
0: अच्छा, कोई बात
1: कार्यक्रम बहुत प्यारा चल रहा है वैसे।
0: थैंक यू सो मच। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं आप?
1: जी ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
2: ना हो सका मैं तुझसे,
1: थैंक यू सो मच।
2: दूर रहकर भी इतना लौट के आया हूँ फिर बताने, हमें तुमसे प्यार कितना।

दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9135 84 12 32।

0: और ये रहा आज का पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: पहले तो ना यूं छाई थी जुल्फों की ये घटाएं, पहले तो ना यूं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: बहुत बहुत बधाई हो भाई, सिर्फ अकेला जवाब दिया आपने, बाकी किसी का जवाब सही नहीं पहुंचा हुआ है।
1: जी जी,
0: तो बताइए जवाब क्या है?
1: मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी।
0: बिल्कुल मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी गरम। क्या सुनना पसंद करेंगे
1: सर? अर्णा जी की करण अर्जुन पिक्चर का ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आपका और हमारा रिश्ता यही बना रहे, बस यही गीत सुना।
0: बंधन तो प्यार का बंधन है, ये सुनना चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, सुनवा दूंगा मैं।
1: जी जी,
0: नो प्रॉब्लम है कि नहीं? चलिए एंजॉय कीजिए गाने को। धन्यवाद
1: जी जी, थैंक यू।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, गोरे गोरे मुखड़े वाली और काले काले नैनो वाली, मान मेरा एहसान ये मैंने हाँ कर दी, तू वरना कुंवारी रह जाती, ये शादी हमारी रह जाती।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

और मेरे पास एक ही जवाब जो आया हुआ है जो बिल्कुल सही है और बाकी दोस्तों का जवाब तो गलत है, और वो है ये जवाब बिंदिया जी का जवाब है। और बिंदिया जी ये लिखती है कि मुझे कॉल मत कीजिएगा लेकिन मेरा गाना जरूर प्ले कीजिएगा। बिल्कुल आपका गाना प्ले करूंगा मैं आपका। और जवाब है ये निके चल प्यार करेगी, हाँ जी नाजी नाजी वाला गाना सुने ना, वही गाना है। लेकिन सभी ने ज्यादातर भेजा है कि लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, ये गलत जवाब है, ये सही जवाब नहीं है। ओके तो इसका सही जवाब है ये निकचल प्यार करेगी। ओके और एक ही जवाब मेरे पास सही आया हुआ है वो बिंदिया जी का है। तो बिंदिया जी थैंक यू सो मच, आपने सही जवाब दिया। इंजॉय कीजिए अपने गाने को। बाकी सभी ने एक ही लड़की तुम्हारी कुंवारी, वो सही जवाब नहीं था।

0: और ये रहा अगला सवाल, ध्यान से सुनिएगा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ, जहाँ पे एक पल भी ठहरूं मैं गुलिस्तां बनाऊं।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

ओके जी, मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है यहाँ पे राधिका जी का, उनके बाद से अमीना खान जी का और महक जी का, नाहिद जी का, जाकिर जी का, प्रमोद जी का और रूपचंद जी का। इतने दोस्तों का बिल्कुल ये नहीं सही जवाब पहुंचा हुआ है। कॉल लगा।

0: कोई बात नहीं, राधिका जी ने कॉल रिसीव नहीं किया। चलिए मैं सेकंड अमीना खान जी को मैं कॉल लगा लेता हूँ क्योंकि उनका सेकंड नंबर था। अमीना खान जी बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि राधिका जी ने कॉल रिसीव नहीं किया इसलिए आपका नंबर लग गया।
1: जी अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, और कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक।
0: और फर्स्ट राउंड में
1: आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। आप फर्स्ट राउंड में नहीं थी, सेकंड राउंड में आई हैं?
1: नहीं नहीं, मैं राउंड में तो थी, बस मैंने पार्टिसिपेट भी किया।
0: अच्छा, ओ थी, मुझे लगा आज आप नहीं सुन रही हैं।
1: थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया लेकिन ज्वाइन कर लिया था।
0: अच्छा कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका जवाब क्या है?
1: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और आप गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा।
0: निकम्मा किया इस दिल ने, ओहो हो, इस दिल ने किया निकम्मा। सच में दिल अजीब सा होता है, निकम्मा कर ही देता है।
1: जी जी
0: कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: जी।

0: ओके यहाँ पे सवाल कर लेता हूँ मैं जल्दी से।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते ना थे मौत से अब मगर डरने लगे। सावन की इस पहली बरसात में सब देख लें सपने एक रात में, कट जाए ना जिंदगी एक ही मुलाकात में।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: बिल्कुल, और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, नादान है, कुछ ना समझता है, दिन रात ये आही भरता है।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और इस बार मेरे पास मैसेज पहुंचा है सबसे पहले रवि मोहाड़े जी का, आरजे यानी सोनी जी का, उनके बाद से है हमारे ये क्या नाम है यानी महक जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, और जितेंद्र जी हैं, रूपचंद जी हैं, और रुबीना नाथ जी हैं, अशोक पाल जी, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा अभी का जवाब आया हुआ है मेरे पास, बहुत ज्यादा। तो सीधे कॉल लगाते हैं रवि मोहाड़े जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में रवि मोहाडे जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मेरा नंबर लग ही गया आखिर। और सुनाइए कैसे हो सर जी आप?
0: अरे हम तो एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास, मजे में चकाचक है एकदम।
2: जी जी, चलिए भगवान ऐसे ही रखे आपको हमेशा हंसता खेलता खुश है।
0: धन्यवाद आपका, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो बताइए आज

0: हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, किसी को प्यार कहते हैं। ये वाला सॉन्ग है सर जी, मिलेगा तो ठीक है, आपकी आपकी पसंद से सुनवा दीजिए।
1: ये तो मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सा गाना है, क्या ये मतलब एल्बम सॉन्ग है?
0: जी एल्बम सॉन्ग है, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का।
1: ओके ठीक है, तो मैं सुनवा दूंगा, क्या दिक्कत है, हर गाने एंजॉय कीजिए। चलिए
0: थैंक यू।
1: लेकिन ये गाना मुझे 2 मिनट का ही मिला हुआ है।

0: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
1: कोई नामे वफा पूछे, कोई नामे वफा पूछे, मैं नाम तेरा लूंगा। जब चाहूं तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगा।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9841232 यानी 91-35-84-12-32 पे, अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट, जो आप या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना बजा।

बिल्कुल इसी को प्यार करते हैं। लेकिन मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है, सबसे पहले भाई सोनू गौतम जी का, आरजे सोनी जी का, रुबीना नाथ जी का, महक जी का, मीना खान जी का, प्रमोद जी का, फैज जी का, इस्माइल जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का। सीधे कॉल लगाते हैं सोनू गौतम जी को।

0: नमस्कार, कैसे हैं जी? बहुत दिन बाद।
1: बढ़िया है जी, अपने बताइए।
0: अरे हम तो झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास मजे में, चक्का चक, बोले तो लय भरी गारंटी के साथ।
1: तो अच्छी बात है ना सर, चकाचक ही रहना चाहिए जीवन में।
0: तो बताइए, ये आपका जवाब क्या होगा?
1: आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा।
0: जी बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना ये दिल लगी का सुनवा देना, लगी लगी है ये दिल की लगी।
0: लगी लगी है दिल की लगी। अच्छा,
1: तब तो ना समझो इसे दिल लगी।
0: लगी लगी है ये दिल की लगी,
1: यही वाला सर।
0: अच्छा देखता हूँ, मैं इस गाने को निकालता हूँ। ओके, मुझे मिल रही
1: है। हाँ जी।
0: लगी लगी है ये, मतलब मिल जाएगा है ना?
1: हाँ, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण,
0: हाँ जी,
1: लता मंगेशकर, इन तीन की आवाज में।
0: हाँ जी, मिल गया मिल गया मिल गया जी। ये दिल लगेगा गाना है ना?
1: जी जी जी।
0: ओके, एंजॉय कीजिए अपने गाने को। धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: और संजय प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है।

0: और ये रहा अगला अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारी जवाब।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

0: ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूवी चॉइस और कीजिए दिए गए फिल्मों से गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के एप्स दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और इस बार मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं और सबसे पहला तो मेरे पास जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो किन का है, अमीना खान जी का। ओ माय गॉड। उसके बाद यहाँ पे रुबीना नाची हैं और प्रमोद कुमार जी हैं, सरफराज जी हैं, राहुल शुभ जी हैं, इस्वाल जी हैं, रवि महाड़े जी हैं, फैज जी हैं और भी बहुत से दोस्त हैं। मतलब इन सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सीधे कॉल लगाते हैं अमीना खान जी को एक बार फिर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है अमीना खान जी।
2: जी जहे नसीब, जहे नसीब।
1: ओके जी, बताइए तो
2: बोलिए,
1: इसका जवाब क्या है?
2: इसका जवाब एक मेरा तेरे लिए हम जी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, और आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: वो सॉन्ग है ना, अभी एन लिखूं तो सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं।
1: अच्छा, ऐसा कुछ गाना
2: है वो सॉन्ग।
1: एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ। अभी एन लिखूं,
2: मैं आ लिखूं तू आ जाए।
1: अच्छा,
2: मैं बैठ लिखूं तू बैठ जाए, ऐसा कुछ है।
1: इसका लिख रहा है इश्क, लिख रहा है इश्क।
2: हाँ वही वही, अभी एन लिखूं मैं, इशीन लिखूं।
1: अच्छा ओके, तो ठीक है, फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ इस गाने को प्ले करने के लिए। इसमें दो वर्जन मुझे दिख रहा है, एक राहत फतेह अली खान का है क्या?
2: नहीं, कोई एक न्यू सिंगर है।
1: अच्छा, न्यू सिंगर
2: इनायत, ऐसी कुछ नाम है।
1: मैं एक काम करता हूँ, गाना प्ले करता हूँ, क्योंकि ये गाना मैं पहली बार सुनने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। अगर यही हुआ तो ओके कर दीजिएगा। ओके
2: हाँ जी,
1: एंजॉय कीजिए।

0: मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये गाना मुझे बेहद पसंद आया। थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और ये रहा अगला,
1: ये रहा अगला किसी गाने का अंतरा। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है। सदियों से जिसकी तमन्ना थी मुझको, मुझे वो मेरी जिंदगी मिल गई है। तेरी बातें सुन के मेरी ये निगाहें झुकी जा रही हैं, शर्म से, शर्म से।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना। बजाते रहो।

0: नहीं जा रहा मैं, ट्रांसफर हो गया मेरा।
1: सच?
0: हाँ।
2: ओके, इस पर बाजी मारी है रुबीना नाची, आरजे सोनी जी, सोनू गौतम जी एंड एमडी फैज जी, रवि महाराज जी, प्रमोद जी, मतलब बहुत से दोस्त है। तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं रुबीना नाची को। बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाची, कैसी हैं आप?
3: जी शुक्रिया, मैं अच्छी हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर से ट्राई कर रही हैं, अभी आपका नंबर लगा है।
3: हाँ, बहुत टाइम से।
2: जी जी बिल्कुल,
3: पता नहीं आज क्यों नहीं लग रहा था।
2: अब जल्दी नहीं लग रहा था, बहुत से आपसे भी ज्यादा फास्ट फास्ट लोग भेजने वाले है ना।
3: हाँ।
2: इसलिए
3: सही बात है।
2: बताइए तो,
3: बहुत ट्राई करना पड़ा, तब जाके
2: ट्राई करना पड़ा, लेकिन नंबर तो लग गया फाइनली।
3: जी,
2: जवाब बताइए पहले, और क्या सुनना पसंद है?
3: जवाब जवाब है मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे।
2: और क्या सुनिएगा?
3: और गाना सुना दीजिए, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।
2: चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, तो यानी तो जल्दी पड़ जाइए ना। इंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया आपका।

0: हो।
1: मेरे हम

0: और ये रहा अगला सवाल अंतरे वाला।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: ओ कहने वाली मुझको फरीबी, कौन फरीबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

और नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, डिस्कनेक्शन हो रहा है बार बार। लेकिन मेरे पास जो मैसेज सबसे पहले पहुँचा हुआ अंचल कुमार जी का पहुँचा हुआ, अंचल कुमार जी और महक जी, रवि महारे जी हैं और उनके बाद अमीना खान जी हैं और सोनू गौतम जी हैं, ज्योति जी हैं, ईश्वरलाल जी हैं, कुंता बेनी जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं, बहुत सारे दोस्तों के। ओके जी, तो फिलहाल सीधे कॉल लगा।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंचल कुमार जी। हेलो जी,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: रेडियो चालू था तो आराम बाजार से बंद किया।
0: कोई बात नहीं, बोलिए।
1: इसका आंसर सर।
0: हाँ हाँ, इनसे बताइए पहले।
1: क्या हुआ तेरा वादा?
0: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना चाहते हैं
1: सर? फिल्म मैना का वो गाना हुआ, उसमें
0: इसको
1: चाहूँ तुम्हारे सिवा खुदा
0: ना। हाय हाय हाय हाय, भाई क्या गाना लगा है। किसी को चाहूँ तुम्हारे सिवा खुदा न करे। आये है, क्या बात है। ये तो मेरा फेवरेट गाना मिलता है। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल खुदा न करे तुम्हें किसी को चाहूँ।

0: बिल्कुल किसी को चाहूँ तुम्हारे सिवा, खुदा न करे। फिलहाल ये अंतरा सुनिए, जवाब दीजिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, आंचल में भर ली हमने सारी बहारे संसार की। नई अदा से हम इठलाए, पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: बिल्कुल किसी को चाहूँ तुम्हारे सिवा खुदा ना करे। मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुँचा है बिंदिया जी का, रवि महाराज जी का, राहुल जी का, ज्योति जी का, अंचल जी का, ईश्वरलाल जी का, जाकिर जी का, कुंता जी का, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। लेकिन ये बिंदिया जी को तो मैं फोन नहीं करूँगा, सीधे इनका गाना प्ले करता हूँ।
1: सारे गामा का

इसी बात पर बिंदिया जी मैं आपको बनाता हूँ आज का सॉन्ग विनर। सच में मुझसे रहा नहीं गया, इस गाना इतना प्यारा है, इतना दिल को सुकून देने वाला गाना है कि मतलब मुझे मेरे मुंह से निकल ही गया कि आज आप बननी है सॉन्ग विनर। बधाई हो। एक और गाना सुन सकती है ऐसा ही बिल्कुल अच्छा सा।

0: और मैं तो भूल ही गया था कि मुझे सवाल भी करना है। ओ माय गॉड, मैं इतना गाने में खो गया था, सॉरी।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। चेहरा कवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: बहुत सारे मैसेज आए। सबसे पहले भाई सरफराज जी, सोनू गौतम जी, राहुल शुभ जी, हमें साहेब राव जी, महक जी, अंचल जी, जाकिर जी, ईश्वरलाल जी, ज्योति जी, रवि महर जी, कुंता बेन जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं, बहुत से दोस्तों के माय गॉड मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारे दोस्तों का गाना, मतलब क्या ही कहें। फिलहाल कॉल लगाते हैं। बहुत बहुत वेलकम है सरफराज पटेल सरफू भाई साउथ अफ्रीका से।
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाईजान?
0: अरे हम तो एकदम बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए।
1: ये आपकी दुआ है।
0: तो आज क्या आगे, पहले जवाब बताइए।
1: जवाब तो मुमताज है मेरे बाबू की।
0: बिल्कुल, यानी प्यार हमारा अमर रहेगा, है ना?
1: हाँ, वो वही वाला
0: बिल्कुल। तो आज और सुना क्या चाहेंगे?
1: सुनना वो माया मेम साहब मूवी है।
0: अच्छा,
1: सॉन्ग के बोल है एक हसीन निगाह का।
0: वाह, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल ये आखिरी सवाल है आज का,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

अच्छा, और मैं ओ माय गॉड, मेरा माइक ऑफ था क्योंकि मेरी मम्मी का कॉल आया था और मैं उनसे बात करने लगा था, सॉरी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे पहला सही जवाब आया था हमारे पास, यानी कि रवि मोहड़े जी का, और रवि मोहड़े जी के बाद से आया था सही जवाब आरजे सोनी जी का और महक जी का, और बहुत से दोस्तों का जवाब इसका आया था गलत, और सही जवाब है यानी कि तेरा मेरा है प्यार अमर। ओके, तो रवि मोहड़े जी को मैंने एक बार कॉल लगा लिया, इसीलिए दोबारा इनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।

और सबसे पहले मैं गाना प्ले करने वाला हूँ जो आज के ये बिंदिया जी आज के सॉन्ग के विनर बनी है उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि उनका गाना आ चुका है मेरे पास। इसके बाद मैं स्पेशल कॉल स्टार्ट करूँगा करना।

0: बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार,
1: ठीक है, नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। ईश्वर का दया है, आप लोग का आशीर्वाद है।
0: जी जी जी, वो तो हमेशा रहता है। और तो आज क्या सुना, आप सुना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: बनारसी बाबू है फिल्म, गाना है पान का एक बीरा खिला।

0: भाई ईश्वरलाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको स्पेशल कॉल में, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। बहुत आजकल दिखाई नहीं दे रहे, आप कहाँ रह रहे हैं भाई?
1: सर दिखाई तो देते हैं, पर अभी खुद के मकान का काम चल रहा था, बहुत बिजी, रात को 8-9 बजे तक। अच्छा। जी
0: तो
1: अभी क्या है, बरसात भी आने लगी, अभी हमारे यहाँ पे तो पानी 20-25 दिन हो गए, पानी गिर ही नहीं रहा।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी
0: फसलें गिरेगा, टेंशन मत लीजिएगा,
1: फसलें भी सूखने की तैयारी लग गई।
0: होता है, होता है, कहीं कहीं होता है, ऐसा होता है। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे
1: सर? गीत सुना दीजिएगा सर आपको, मेरे सनम तेरे सर की कसम।
0: मेरे सनम तेरे सर की कसम, यही ना?
1: जी सर। सर आपको उधर पानी गिर रहा अभी?
0: हाँ, पानी तो डेली होता ही है, डेली।
1: अच्छा, हमारे इधर तो फसलें बिल्कुल नहीं, समझ लो अगर 2-4 दिन और नहीं आए तो डबल बोना पड़े।
0: कोई बात नहीं, चलिए एंजॉय कीजिए गाने को, है ना?
1: ओके।

0: एक दो फीडबैक है उसे शामिल कर लेता हूँ मैं। पहला तो ये
1: मोहन सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आज हमारा गाना आप चला दिए, थैंक यू। और आज अशोक भाई जी का बर्थडे है, उनके हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर उनको खुश रखे, आवाज रखे, यही ईश्वर से दुआ मांगते हैं। और खूब वो खूब मस्त रहे, खुश रहे, आवाज रहे, यही हमारा उनका लिए दुआ है।
0: ओके जी, और ये फीडबैक
2: पन का एक बीड़ा खिला दो, फिर पन का एक बीड़ा खिला दो, फिर चल देखो बनारसी बाबू की।
3: बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सॉन्ग हमारे आदरणीय सर्वेश भगत जी का।
0: राहुल,
3: अभी जो गाना चल रहा सर, उसका म्यूजिक सही नहीं आ रहा है, और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि फीडबैक दे सकूं। आज हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। भगवान खुश रखे, हैप्पी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे।
0: ओके, धन्यवाद।
3: शुभकामनाओं के साथ मैं रवि मोहाड़े, बैतूल मध्य प्रदेश।
0: राहुल पासी जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी बात पर एक काम करते हैं, आज के यानी बर्थडे बॉय अशोक देशमुख जी को कॉल लगाते हैं।

0: और ये फीडबैक हो रहते हैं
1: जिस पहले जिस ज्यादा जिस पहले जिस ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली कितनी सुहानी।
2: बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पसंद हमारे मित्र श्री अशोक देशमुख जी की, मजा आ गया।
0: ओके और रोहित कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अगला कॉल लगाते हैं नाहिद जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में नाहिद अंसारी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम।
1: आप बताइए।
0: एकदम हम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक हैं। आपने यानी के फर्स्ट अपने राउंड में पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन सिर्फ यानी कि दो नंबर से, मतलब हमेशा दो नंबर आती थी ज्यादातर।
1: नहीं आया तो क्या कर सकते, नहीं आया नंबर
0: जी, बिल्कुल
1: कोई बात नहीं, चलते जो होता है।
0: अच्छा ओके, कोई बात नहीं, तो आज क्या सुनना करेंगे?
1: गुनामों की तरफ उठकर हम उन्हें बुलझाने लगे
0: जी, ठीक है, चलिए आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए, है ना? धन्यवाद। आज से पहले रूठकर हम उन्हें झूल जाने लगे, एंजॉय द ट्रैक।

0: और अब हर यानी बुधवार को जो भी दोस्त है वो मुझे मतलब जो जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या कभी मैसेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक ऑप्शन रहेगा, वो मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और कॉल करके अपना गाना सुन सकते हैं सिर्फ यानी के बॉलीवुड यानी मिक्स मस्ती में, है ना, यानी मिक्स मस्ती वाले शो में वो मुझे कॉल कर सकते हैं, ये लाइव शो में वो मुझे बातें करेंगे। जिनका जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो नए जो बिल्कुल नए होंगे उनके लिए वो ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है, कैसे मैसेज करना है, तो ये ऑप्शन उनके लिए अगले यानी बुधवार से मतलब इस यानी बुधवार से स्टार्ट किया जा रहा है। तो वो लोग मुझे फोन कर सकते हैं डायरेक्टली लाइव शो में, वो मुझे बात करेंगे, नंबर पे करना होगा, व्हाट्सएप पे नहीं करना होगा, नंबर पे कॉल करेंगे और मैं उनसे बातें करूंगा, उनके गाने भी प्ले करूंगा और फिर वे गाए हुए क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे, ओ जाने वाले ओ जाने वाले। मस्त सॉन्ग लगा मन सर जी,
0: ये बिल्कुल। और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और उनका उनका जो पसंद का गीत जो ये मेरी पसंद थी बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी बात पर नाई जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, अगला कॉल लगाते हैं।

0: जाकिर जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो स्पेशल कॉल में।
1: जी सर।
0: और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं?
1: बहुत अच्छे।
0: स्पेशल कॉल में ही आपका नंबर आया आज, आज भी अगले हफ्ते की तरफ।
1: जी सर।
0: तो बताइए,
1: आया तो नंबर।
0: आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज पुराना सॉन्ग है, मेरी सांसों को जो महका रही है। ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से आ रही है।
0: मेरी सांसों को जो
1: महका रही है। फिल्म बदलते रिश्ते।
0: अच्छा, बदलते रिश्ते का गाना है।
1: जी सर।
0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में है।
1: जी सर। जी सर।
0: ओके, तो सुना रहा हूँ, एंजॉय कीजिए अपने गाने को। धन्यवाद।
1: जी, थैंक यू।
0: वेलकम जी। राधा कृष्ण गोप यहाँ लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी को बहुत बहुत

0: वाइंसलाइन MD5 जालम जी, स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं।
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सुनवा दीजिए तुझ पे दिल।
0: तुझ पे दिल मतलब तो आगे कुछ बोलिए।
1: तुझ पे दिल कुर्बान है,
0: कुर्बान है।
1: सैयारा मूवी का गाना है।
0: मुझे तो नहीं पता लग रहा है। तुझ पे दिल कुर्बान। अच्छा हाँ हाँ एक मिनट, मुझे ये मिल गया।

0: एकदम एकदम जी
1: एक
0: बोलिए।
1: बात और बोलना था।
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
1: आज स्पेशल सॉन्ग रिक्वेस्ट डाले हैं, देखे हैं क्या?
0: नहीं देख पाया हूँ मैं।
1: नहीं देखे हैं?
0: नहीं
1: देख लीजिएगा उसको
0: स्पेशल सॉन्ग। अच्छा हाँ स्पेशल सॉन्ग तो आया हुआ है, लेकिन एक गाने से नहीं होगा ना। अच्छा हाँ, और अप्रूव हो जाएगा ये आपका, हो जाएगा, नो टेंशन। अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट आ गया है और ये दूसरी बार आया हुआ है। यानी कि सबसे पहले आया हुआ था आरजे वंशिका जी के, जब मतलब ये मम्मी का जन्मदिन था तो आया था, और फिर अभी सेकंड आपका आया हुआ है। तो लोग इसका फायदा उठाते नहीं है। ये फैसिलिटी है कि भाई अगर किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो आप स्पेशल रिक्वेस्ट कम से कम यानी 3 दिन पहले कर सकते हैं उसमें है, यानी कि 3 दिन उसके बाद वो नहीं लगेगा। जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन नहीं लगेगा, आपको 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, और भी पहले कर सकते हैं। हाँ ना, मतलब यानी कि और भी पहले कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम 3 दिन पहले करना होता है ना।
1: बहुत टाइम लगता है फॉर्म फिलअप करने में वो।
0: एक्चुअली अब क्या है कि आपको आपको वहाँ पे गाना का टाइपिंग ही ना करना होता है, और कुछ तो नहीं होता है। तो गाने जब तक आप वहाँ पे एक लिस्ट
1: गाना गाना का लिस्ट बनाइए, फिर उस पर फॉर्म में डालिए।
0: बस आप देखिए एक्चुअली बहुत आसान है। पहले यानी कि व्हाट्सएप पर गाने का एक एक करके लाइन वहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बहुत आसान है, ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन बैठ कर सब कुछ करें। बहुत आसान है कि पहले एक एक करके गाने को लिख लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आराम से, नो प्रॉब्लम। ओके
1: ठीक,
0: ओके, वालेकुम सलाम। चलिए इंजॉय कीजिए, गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में गजानन जी।
0: आदर
2: नमस्कार नमस्कार, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, यात्रा से वापस लौट रहा हूँ घर के लिए।
1: अच्छा,
2: अभी मैं जम्मू में हूँ।
1: अच्छा ओके, जम्मू में है तो आज जम्मू में आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: जम्मू कश्मीर के बारे आधारित गीत है सर जी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है।
1: अच्छा, ये कश्मीर है, सुनिएगा। ओके ओके, हाँ। कोई बात नहीं, मैं आपको इस गाने को सुना रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

और जाते जाते एक गाना मैं अपनी पसंद का प्ले करके जा रहा हूँ आप सभी दोस्तों के लिए, और तो एंजॉय कीजिए। और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे और स्टार मूवी चॉइस में, और मूवी का नाम आपको दिए जाएंगे। उन मूवी में से ही आपको गाने की फरमाइश करनी है, डिमांड करनी है और रिक्वेस्ट भेजनी है। तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार, ज्योति वाना बनाते।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच
0: सच।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। इंग्लिश।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।
1: नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.